0: यार क्या बात है नछत्र गिल साहब भी अपना ना कुछ आवाजन की गल करते हैं मनमोहर वाल साहब हो गए नछत्र गिल की भी आवाज यार वाह क्या कमाल है याद है तुम्हें गाना इन्हों का तारे आंदी लोए ते मेरी जान आप दोए कदे कट्ठे नहीं हो होए किन्ना चेर हो गया भी बड़ा यार प्यारा गीत सी सो प्रोग्राम है पंजाबी ना ते गीत सिंह जी थोड़े मन पसंद लग रहा नंबर है अपना 9056733337 9056733337 अपना एक एक फोन नंबर है ते गल्लां बातां थोड़े नाल हो रही ने एक मैं कैलेडन मित्सुबिशी का नंबर भी जरूर दवा जे तुसीं वधिया गड्डियां लैणियां ने ना 10 साल की वारंटी 10 years नहीं तो गड्डियां की 10 साल की कितने वारंटी मिलती होंगी है कैलेडन मित्सुबिशी के जीवन सिद्धू भाई जी ने तुसीं कॉल कर लो 6476782754 6476782754 कैलेडन मित्सुबिशी ने तुसीं जरूर कॉल करो एंड जीवन होना को टॉप दियां डीलां लै लवो राजवंत कौर ने जदों थोड़ी इंश्योरेंस देख ली तो राजवंत ने थोनों ऐसा डिस्काउंट लैके देना तुम भी सोचते रह जाओगे बल्ले यार नवी एडे वे वे डिस्काउंट गड्डिया की इंश्योरेंस के उत्ते सो राजवंत कौर 25 तो वध कंपनी नाल डील करते हैं तो 30% तक का डिस्काउंट लैके देंगे थोनों 6476744735 नंबर है राजवंत का 6476744735 राजवंत कौर साडे नाल ग्रैंड होम फर्नीचर तो सुख भाजी एक बार फिर जुड़े आते ग्रैंड होम फर्नीचर से बहुत ही जबरदस्त सेल इस वीक चल रही है जी सुख भाजी वेलकम
1: बहुत शुक्रिया धन्यवाद नवी भाई जी बिल्कुल इस वीकेंड के उपर परिवार ने किसी भी तरह की फर्नीचर की बाइंग करनी है तो वीकेंड के उपर फ्राइडे वाले दिन लाइव लोकेशन प्रोग्राम चलना पंजाबी लहरां दा जिन्हें भी परिवार ने साडे कोल पहुंचना तोहफे ते डिस्काउंट तुसीं अपने घर लेके जा सकते हो ते नाल दी नाल जिन्हां परिवारां ने रिकलाइनर सोफा सेट लेना अपने फैमिली रूम दे लई चॉकलेट कलर दा लैदर दा रिकलाइनर सोफा सेट 3 सीटर सोफा 2 सीटर लफड़ 4 रिकलाइनर दे नाल जी हां फुली लोडेड 4 रिकलाइनर दे नाल लैदर दा सोफा सेट रिकलाइनर सोफा सेट जी दी रेगुलर कीमत $2500 सी इस वीकेंड दे उपर स्पेशल सिर्फ $999 दा जी हां $2500 वाला रिकलाइनर सोफा सेट $1000 दे विच तुसी अपने घर लेके जा सकदे हो कंप्लीट सोफा सेट चॉकलेट कलर दा लेदर दा रिकलाइनर सोफा सेट $1000 दा ते नाल बड़े साइज दा टेलीविजन टीवी बिल्कुल फ्री तोहफा दित्ता जाना सो सारीयां डीलां लैण वास्ते पहुंचना किथे आ जी 6685 टॉमगन रोड दे उपर 6685 टॉमगन रोड डेरी टॉमगन दी मेन इंटरसेक्शन हाईवे 410 तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी के उपर 6685 टॉमगन रोड 6685 टॉमगन रोड नवी भाजी
0: क्या बात है 6685 टॉमगन रोड डेरी टॉमगन ते तुसी एक बार मारो गेड़ा ते वधिया टॉप दी डीलां तुसी लो थोड़े लिए सुख भाजी हाजिर ने मास्टर जूलर से भी पहुंच जाओ एयरपोर्ट रोड ते मेफील्ड नवे प्लाजे दे विच एक तो यह प्लाजा बड़ा यार रौनक लगी रही इतने सो एयरपोर्ट एंड मेफील्ड से जाओ वधिया टॉप टॉप टॉप की ज्वेलरी लेनी है सोने की खरीदारी करनी है तो मास्टर ज्वेलर्स हर किस्म की सोने की ज्वेलरी गोल्ड खरीदो एट मास्टर ज्वेलर्स एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड 6231 मेफील्ड रोड एयरपोर्ट मेफील्ड के कोर्नर से पहुंचो 9181 हाँ जी ठीक है जी वधिया वधिया दसो हाँ जी ਕੋਈ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ
2: ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ
0: ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੁਕੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ

अच्छा यार कल कमाल हो गई, किन्ने किन्ने कल पंजाबी विरसा वेख्या, किहड़े किहड़े दोस्त गए सी पंजाबी विरसा वेखण, मनमोहन वारस, कमल हीर ते सिंगतार दी गायकी दा यार ओ सुमेल, किन्ना किन्ना ने कल जलवा वेख्या। अच्छा मैं बैटर रहूगा कि मैं जे कोई दोस्त कल पंजाबी विरसा वेखण ग्रेट कैनेडियन सेंटर दे विच गया सी थिएटर दे विच, ते ओ मैनू जे मैं ना गल करना मैं रिलेट कर सकदा, ऐदा मैं कल ही दसूँगा, जिहड़े दोस्त नहीं गए सी उन्हां नू समझ च नहीं आउणा, ते फिर मैं गल करूँगा। जे कोई पंजाबी विरसा कल वेखण गया सी तां मैनू कॉल करो, गलबात करनी है बहुत प्यारी, 905-673-3337 905-673-3337। यार कमाल हो गया कल, कमाल।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादा दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह

0: बड़ी वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
1: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लभ रहे हो फिर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकड़ लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस डबल कार गैराज ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट कॉल द बेस्ट टीम फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एट 905-671-2000.
1: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.
2: जे टाइम दी सेविंग करना चाहते हो तो पहुंचो ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड जिथे तुसी ट्रक वॉश ट्रक ऑयल चेंज ते रिपेयर एक ही रूप थले करा सकते हो इत्थे बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे ने जिवें ऑयल चेंज नाल ट्रक वॉश सिर्फ $45 तुसी कैट दी बैटरियां विद इंस्टॉलेशन चेंज करा सकते हो एट $850 सारियां रियर ड्रम एंड रियर ब्रेक चेंज एट $750 एंड एसी रिचार्ज इज एट जस्ट $180 सो रीच आउट टू दैम कॉल एट 905-452-9955 इन्हों का एड्रैस है 71 स्टैफर्ड ड्राइव ब्रैम्पटन ते राइट नाउ ये हायरिंग भी कर रहे हैं जो तुम्हें ट्रक मकैनिक का कोई एक्सपीरियंस है यू कैन कॉल दैम देयर नंबर इज 905-452-9955
3: रियल एस्टेट दी दुनिया विच आओ अपने सुपनियां नु सच कर विखाओ फेयरडील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
4: रियल एस्टेट दियां बारीकियां सिखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ
3: फेयरडील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने
4: आज ही कॉल करो फेयरडील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
3: 905-671-2000
4: फेयरडील नाल हाथ मिलाओ अपने सुपनियां नु सच कर विखाओ
5: घर नू घर बनाउंदा है कंफर्टेबल फर्नीचर ते जदों फर्नीचर दी गल आउंदी है ते फिर याद आउंदे ने कासा फर्नीचर वाले जो है सब तो पुरानी ते भरोसेमंद फर्नीचर दी दुकान जी हां इत्थे तुहानू मिलदा है कस्टम सोफा लेदर सोफा सोफे डबल बेड मैट्रेस ते पूरे घर दा सारा फर्नीचर ओ भी वाजिब रेटां ते सो आज ही पहुंचो कासा फर्नीचर 120 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड ब्रैम्पटन इना दी एक और लोकेशन है सोफा मार्ट 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन ज्यादा जानकारी लिए कॉल करो परमजीत होरानू 905-803-8056
6: कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो त्वाडे बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो त्वाडे बैंक अकाउंट नु सीज या फ्रीज कर सकते हैं तुसी CRA दे कर्जे नु लीगली माफ करवा सकते हो फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल DCAP
7: 905-908-2499 और विजिट 411debt.ca सम कंडीशंस अप्लाई
8: ऑटो ओनर्स क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है अगर आपके पास जी या जी टू लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए
9: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें जो आपको अच्छा प्रीमियम ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं All State Insurance के दीक्षा गुलेरिया 647-656-2810 That is 647-656-2810
10: ड्राइव कर रहे हो शोनो एंजॉय कर रहे हो कुछ भूल रहे हो
11: ड्राइविंग लाइसेंस
10: नो
11: पुलिस ऑफिसर
10: नो नो
11: ट्रैफिक लाइट्स
10: नो
11: देन
12: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नु चेक कर ले आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल 10 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस
13: जिंदगी एक सफर है सुहाना
12: की तुसी कहना

0: 15 साल है। हाँ। अब ऐसा भी है आपको, जैसे आपको गवर्नमेंट से $1,00,000 मिला,
1: अच्छा,
0: उसी पहले किस्त बनेगी अप्रोक्सीमेटली मान के चले $1,000 पर मंथ,
1: अच्छा,
0: उसमें से ब्याज है $150 से $170 पर मंथ,
1: अच्छा,
0: 10 साल के लिए। अगर 15 साल की बनाएंगे तो ये 800 तक चली जाएगी।
1: ओके,
0: ठीक है, पहली बात, नो क्रेडिट चेक, नो सिक्योरिटी, क्रेडिट स्कोर आपका 0 भी एलिजिबल है,
1: अच्छा,
0: और आपकी अगर जॉब नहीं लगी मान लो 2 साल बाद,
1: मतलब मेरे को काम नहीं है
0: क्या, अब गाड़ी वाला लोन वाला गाड़ी उठा लेगा,
1: हाँ,
0: घर लोन वाले अगर लोन पे तो घर वाले बैंक वाला लोन घर उठा
1: लेंगे। हाँ।
0: अब यहाँ पे आपकी क्या एडुकेशन उठा लेंगे,
1: वो तो दे
0: आपका सर्टिफिकेट उठा लेंगे, क्यों उठाएंगे वो, गवर्नमेंट
1: सर्टिफिकेट चक ले उन्होंने जो काम मैंने करना वो भी नहीं करना,
0: लोन डेफर हो जाता है,
1: अच्छा,
0: एक साल मॉर्गेज डेफर हो जाती है, मॉर्गेज डेफर तो तब होते हैं जब प्रूडो साहब होते हैं, अब प्रूडो तो है नहीं, अब तो नोचने पे लगे हैं, हर चौथा घर ब्रैम्पटन में पावर साहब लगा हुआ है। अब क्योंकि अब देखिए जी, क्योंकि बंदा जाता है रीफाइनेंसिंग में इक्विटी करा दो, इक्विटी वाले कहते जी आपका 15% मेरा है, मतलब और फिर ऊपर से सारे नकली कागज वाला काम रह नहीं गया।
1: हाँ।
0: इसलिए हम साफ काम साफ तरीके से करते हैं, गवर्नमेंट आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग दे रही है, कहीं भी यूज करें।
1: हाँ।
0: 50,000 से 1,70,000 की फंडिंग है।
1: मैंने तो थोड़ा वो कोर्स बड़ा वधी लगे जेड़ा तुसी सेल्फ स्टडी लगे ना, उत्थे कोई टीचर भी नहीं बैठा, आप ही पढ़ लो,
0: बिल्कुल वो सबसे इजी है।
1: अच्छा, पेपर भी नहीं देना था?
0: उसे पेपर नहीं है, वो सेल्फ स्टडी है, वो और वो एक इजी और एक बहुत इजी है, जो आप चूज करना चाहें। ऑफिस आए,
1: कदों क्लासा शुरू होने दिया
0: उसका? 16 तारीख।
1: अज कितनी होगी? अज तारीख कितनी है भाई?
0: हम 8 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमने देखा हर 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करती है।
1: गवर्नमेंट दे रही है?
0: बिल्कुल गवर्नमेंट दे रही है, हर 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी एजुकेशन में चेंज होती है, जैसे अभी लास्ट मंथ हुई, राइट,
1: उन्होंने चेंज करती है।
0: हाँ, तो अभी जो 2 साल का एनरोल करेंगे,
1: हाँ, ये तो है,
0: उनको आज ये फायदा है, क्योंकि उनको पूरे 2 साल में उतना ही सामान मिलेगा जितना हम बोल रहे हैं।
1: हाँ।
0: अगर आप 6 महीने बाद एनरोल करेंगे हमारे साथ, तब गवर्नमेंट का वो जो 1 अगस्त टप जाएगा सेकंड ईयर वाला, पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो अभी
1: क्लास
0: यानी कि हमारे पास अभी कुछ है, 20 से 30 सीट्स है।
1: और
0: बाकी कहते सेल्फ स्टडी मॉडल पे है, और हमारे लाइक कहते हैं हमारे वाइड रेंज ऑफ क्लाइंटेल है, 50 इयर्स के भी है, 75 इयर्स के भी है, सिंगल मदर भी है, अनएम्प्लॉयड भी लोग बहुत
1: हैं। जिहड़े अग्गे कही जांदे सी कि भई इह तां बंद हो जाणा, इह आई नहीं जी, वो नहीं है, इह चीजां नहीं हैगियां, आए
0: देखे जी,
1: तुसीं सही तरीके नाल सही काम कर दो फिर तां कोई गलत नहीं।
0: बिल्कुल सही बोला आपने,
1: है ना।
0: अब लोग आते हैं हमें कहते हैं सर दूसरे बंदे ने परसेंटेज लिया।
1: हाँ
0: हाँ। और जब हम ऐसा देखे जी, जो मैं सुन रहा
1: हूँ परसेंटेज
0: नहीं, हमारी परसेंटेज
1: नहीं, नहीं। बोले हो।
0: बिल्कुल नहीं है जी, था एयर पे कोई बंदा अपनी फीस बताता
1: नहीं, तुसी $200 जिहड़ी कहने हो फीस 200 लेनी है
0: काम के बाद,
1: जो तो पैसे आ गए
0: बस वन टाइम,
1: ये पैसे नहीं देना है, कोई गल नहीं,
0: कोई पैसा आता है छोड़े पता आएंगे।
1: हाँ।
0: हम भी बाद में पैसे लेते हैं, उल्टा आपकी ईमानदारी चेक होती, क्लाइंट्स की हमारी नहीं होती, हमने साफ रखा एंड टू एंड सारा काम।
1: ये जो मैं इन्हें मैं सेकंड कर दा, मैनू परसों चौथे फोन आया कोई अपने रेडियो तो, कोई इन्होंने करवाया होना, उन्होंने एक ईमेल मैनू भेजी, कहिंदे जी उन्हां दी असी फीस 499 समथिंग सीगी, तो वो भेजनी सी भी असी डिले हो गए थे, भी आही ईमेल है। मैं कहा जी उन्होंने तुम्हें भेजे तो यही होनी है, मैंने पता नहीं, तो मैं आप जल्दी भेज, मैं कहा जी मैं आप जल्दी भेजता नहीं, तो इधर भेज
2: so,
1: वो मतलब उन्होंने वो कहते साढ़े तो आया हो गया जी, मतलब 2.5 महीने,
2: अच्छा
1: 3 महीने हो गए होने,
0: आप ही फिर कॉल करने का टाइम ही नहीं मिलता।
1: वो कहते वो अच्छा इंडिया चले गए, इंडिया तो वापस आए जो आके, फिर वो कहते फिर उन्होंने एक बार पहले भी मैंने कितने पूछा और मेरा चेता भुल गया, भी ईमेल यही है जी, मैनू पता नहीं भी ईमेल कही पूछी जाते, मेरे को कई बार बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, वो परसों जो तो फिर आया भी ईमेल यही है जी, मैं कहा दी ईमेल, कहते जी उन्होंने पैसे भेजना से, मैं कहा तुम उन्होंने फोन करो, उन्होंने जो तुम उन्होंने भेजी है तो यही ईमेल होनी है। सो इस तरीके का तो बी जी ये गल सही है, अगला कॉल कर सकता नहीं करते,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ ਰੱਖਿਆ ਇਨ ਟੂ ਐਂਡ, ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ।
1: ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ।
0: ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤ ਮਾਰਤੇ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤ।
1: ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ

0: इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार
1: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
0: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
1: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
1: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते
2: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
1: 416-509-1509
2: और विजिट इंश्योरेंस फॉर यू
0: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो या चलो एम 530-24/7 जिन्हें भी प्रोग्राम आंदे ने उन्होंने सुन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहते लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहते हो तो उत्ते क्लिक करो या फिर अपने IPTV बॉक्स के उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू कनेक्ट करो उत्थे तुसी सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: लखा दिला दी धड़कन द सुपरस्टार आमी वेयर
6: And Cellular Point present AmiWare live in Toronto. August 30th at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 रॉयल ऑटो सेंटर क्या बात है हाँ जी 1981 हाँ जी वीरे
2: हाँ जी वीरे सत श्रीकाल जी की हाल चाल है
1: वधी वधी वीरे की बनदा
2: बस वधी वधी है वीरे मैं कमेंट करना चाहना हूँ भाई अपनी फैमिली नाल ही रहना चाहिए था बट अलग अलग रह के इट्स नॉट अ वर्थ है ना अपना लाइफ जाना है कितने भी हाँ वर्ल्ड च एक लाइफ कटनी होंगी एक लाइफ जानी होंगी लाइफ जाना चाहिए लाइफ नू लाइफ इज टू शॉर्ट है ना यही चीज मैं कमेंट करना चाहूंगा भाई कट्टो ना लाइफ यार एक चीज पिछे भज के हमेशा बैलेंस बना के चलो पैसा लोकी बड़ा मुख रख लेंगे हाए पैसा हाए पैसा वह पैसे बनाने के चक्कर में आपकी लाइफ इन्ने साल खराब कर लेंगे ना पर पूरे नहीं हो सकते होंगे
1: सो थोनू लगता है कि परिवार को सैट करते करते बंदे जिंदगी अपनी कितना कितने खराब कर लेंगे
2: हाँ जी हाँ जी लोग ना जिम्मे एक चीज फोकस नहीं करते गए हम जो मर्जी वर्ल्ड जो मर्जी चल जाओ बंदा मेहनती होना चाहिए मैं नहीं लगता कोई काम ना मिले जो बंदा मेहनती है कुछ भी करके रोटी रोटी चुका तो कर लूगा ना एक चीज तो लगातार करोगे ना आने वाले पांच साल चार साल लगातार करोगे वह तुम काम आपे ग्रो कर दो तो ईमानदारी काम कर रहे हो मेहनत ना कर रहे हो किसी पिछे लग के बाहर जा वड़ो ये कर लो और डिसीजन नहीं लेना चाहिए तुम हमेशा अपनी उम्र देखो अपनी फैमिली देखो उस बाद डिसीजन लो
1: तुसी फैमिली नू हुण पेरेंट्स नू मिलने किन्ना चिर हो गया थानू
2: मैनू 2 साल हो गए मैं लाइक 2 साल पहले ही आया सी कनाडा
1: अच्छा 2 साल ही होए थे ठीक है
2: हां जी हां जी बट मैं इदा जो पीआर हो गया मैं राइट विच जिद्दे पीआर होया उस दिन ही मैं डॉक्यूमेंट घर दियां दे ला के मैं उहनू घर दियां नू ही बुलाउणा मैं नहीं इंडिया जाणा नहीं खेती हच्चे
1: अच्छा
2: ते हुण ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਨ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਸੀਨੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜਦਾ ਤੇ
3: ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ
1: ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ
3: ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਰੈਂਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ फिर जे नंबर भी आ जाता फिर भी बंदे का कुछ नहीं बनता फिर कहता यार इतने कुछ नहीं बनना बाहर चल गया शायद उत्थे जाके कुछ बन गए क्यों क्योंकि उत्थे जेड़े आ उन्होंने नहीं पता भी इतने कुछ आके बनना कि नहीं बनना सारा नु बाद इतने आके पता लगता भी उत्थे भी मेहनत सी इतने भी मेहनत ही कोई फर्क नहीं गा जो इतने पर कह लो भी जिनी देर तक मच्छी पत्थर नहीं चटदी उन्नी देर तक मुड़ना नहीं
1: जी
3: कई मैं कहना चाहना बाकी
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਥੱਕੇ ਹੰਬੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ।